समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना।

0: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान आकाशवाणी समाचार दिल्ली
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य की जल आवश्यकताओं और शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय के दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में कल शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया श्री मोदी ने जल संरक्षण से जुड़े उपाय अपनाने का आह्वान किया कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है ग्रामीण विकास मंत्रालय दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू कर रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्ष यान है और ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है HPV टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक महत्वपूर्ण उपाय है भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया है विदेश मंत्रालय ने कहा कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा यह दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा इसमें एंटीबायोटिक्स दर्द निवारक दवाएं सर्जिकल उपकरण और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है 6 टन से अधिक बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हैं भोटे कोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल के भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुदृढ़ता दर्शाता है महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा मैच दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा पहली ICC विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi yesterday chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water, organized by the Ministry of Jal Shakti. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicating

0: से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट।

0: साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाद डवेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। यह यात्रा भारत और बेल्जियम के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतर गति को दर्शाती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: Update rahe, aage rahe. expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत के विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
7: मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास, प्रभावी आर्थिक नीतियों, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाई रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.04% पर आ गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नेहा गोस्वामी।
1: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। एक रिपोर्ट।
8: दिशा सालियान मामले में न्यायमूर्ति सारंगी कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीत सिन्हा आर भोसले की खंडपीठ ने कल सीबीआई को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश किसी के खिलाफ दोष सिद्ध करने का संकेत नहीं है। पीठ ने कहा किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक जांच अधिकारी की राय में उनके खिलाफ उचित संदेह पैदा करने के पर्याप्त आधार न हो। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से मात दी। और पहली आईसीसी विमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। आईसीसी ने कहा कि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक ह्युंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन 4 सितंबर को होगा।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। उधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
10: भोपाल, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मंडला में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना में भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने 434 प्रभावित आवासों के लिए 18,01,000 रुपए की सहायता दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट में भी नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।
11: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है क्योंकि बालेश्वर के राजघाट में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 10.36 मीटर के खतरे के निशान के मुकाबले लगभग 11.5 मीटर तक पहुंच गया है। झारखंड के गालुडीह बैरेज से छोड़े गए पानी ने नदी के बहाव को और बढ़ा दिया है। भोगराई, बाल्यापाल और जलेश्वर ब्लॉक के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य जारी रखे हुए है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
12: अपडेट रहे आगे रहें एक्स पर एट ए आई आर न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर ए आई आर न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
1: धन्यवाद कनक। एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का सीईओ बनाए जाने की खबर आज के ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, राम मंदिर के लिए वायुसेना के पूर्व अफसर पर ट्रस्ट। दैनिक जागरण लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के वायुवीर बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी, गोविंद देवगिरी बने महासचिव। अमर उजाला की टिप्पणी है, सिंदूर के सेनानी को रामलला की कमान। राजस्थान पत्रिका ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण के हवाले से बताया है, उच्च शिक्षा में बेटियों की उड़ान, दाखिलों में लड़कों को पछाड़ा। साथ ही पत्र ने यह भी लिखा है, राजस्थान मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब भी लड़कों को बढ़त। नेपाल त्रासदी में राहत और बचाव कार्यों में भारत द्वारा की गई भरपूर मदद पर नेपाल के प्रधानमंत्री का आभार, लोकसत्य के पहले पन्ने पर है। नेपाल के पीएम बोले, भारत का धन्यवाद। अमेरिका में पासपोर्ट नियमों में बदलाव की तैयारी, दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, इसका उद्देश्य अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है। हिंदुस्तान ने राजधानी दिल्ली में एसआईआर के दौरान की गई मैपिंग पर लिखा है, 45% लोग ही दे पाए अपना पुराना ब्यौरा, नाम जुड़वाने के लिए घोषणा पत्र जरूरी। जनसत्ता ने लुप्त प्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए दक्कन में 16 अहम क्षेत्रों की पहचान किए जाने का समाचार प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से देते हुए लिखा है, सोन चिड़िया की संख्या अब केवल 100-150 ही बची है। ये पक्षी कभी पूरे भारत और दक्षिण पाकिस्तान में पाया जाता था। दैनिक भास्कर की ये पंक्तियां ध्यान खींचती हैं, डिजिटल दौर में दोस्ती का संकट, मैसेज तो होते हैं मुलाकात नहीं। एनसीईआरटी द्वारा छठी और नवीं की सभी भारतीय भाषाओं की नई पुस्तकों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखे जाने पर दैनिक जागरण लिखता है, देश की नई पीढ़ी को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की पहल में छात्र सिर्फ भाषा नहीं सीखेंगे बल्कि देश की नदियों के नाम से भी रूबरू होंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for greater adoption of water-saving technologies and learning from global best practices. Prime Minister Modi to hold talks with his Belgian counterpart, Bart de Wever, in New Delhi today. ISRO to launch Earth Observation Satellite EOS-5 from Sriharikota tomorrow. India's sovereign credit rating upgraded to A- with stable outlook by Japan Credit Rating Agency. Bombay High Court orders CBI probe into death of Disha Salian, former manager of late actor Sushant Singh Rajput. And in women's cricket, India to take on Hong Kong in the second Group A match of 2020 Asia Cup in Dubai this evening. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water organized by the Minister of Jal Shakti yesterday. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. We have more from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. Appreciating the intensive two-day deliberations, Mr. Modi suggested that the summit should not remain a one-time exercise and called for a continuous process of review and follow-up. Emphasizing Jan Bhagidari, Mr. Modi suggested promoting Jal Utsav to create greater awareness among people. Prime Minister called for making desilting a regular program and

रहे हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले आज सुबह बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल रात राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। पिछले साल फरवरी में पद संभालने के बाद ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश शासन आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि विश्व इस समय अब तक की सबसे बड़ी भू राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में बेल्जियम जैसे महत्वपूर्ण साझेदार विचार विमर्श के लिए सार्थक अवसर प्रदान करते हैं। बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को अधिक जनसंख्या तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया है। उन्होंने भविष्य की परियोजनाओं के लिए बेल्जियम के साथ सहयोग करने की जरूरत पर बल दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस 5 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को जीएसएलवी F-17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के साथ बैठक की। इसमें स्कूल शिक्षा सुधारों के अगले चरण पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन में भारत की सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनियम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनियम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। प्रवर्तन निदेशालय कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 290 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में कोलकाता के 11 परिसरों में छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार कंपनी ने झारखंड में 66 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण लिया था। आरोप है कि ऋण राशि को निजी हितों के लिए बाद में समूह की अन्य इकाइयों को भेज दिया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस के भीतर यूक्रेन के हमलों और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। श्री रूबियो ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन ऐसी व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं जिनसे यूक्रेन उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उत्पादन कर सके। रूबियो ने ये बात कल एक साक्षात्कार में रूस के ईरान को समर्थन और यूक्रेन में जारी युद्ध पर चर्चा के दौरान कही। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन रूस के भीतर सैन्य और ऊर्जा से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त देखी गई। ताजा जानकारी के अनुसार सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 76,789 पर और निफ्टी 53 अंक बढ़कर 23,967 पर पहुंच गया। क्षेत्रीय स्तर पर रियल एस्टेट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और पूंजीगत वस्तुएं प्रमुख लाभ कमाने वाले क्षेत्र रहे। बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर सुपर 750 टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और हमारे सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
1: आरती श्रीवास्तव का
0: प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: कैसी हो आरती?
1: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल।
0: वो तो लग रहा है
1: जी।
0: आज क्या खाया था तुमने नाश्ते में?
1: नाश्ते में मैंने खाया है बढ़िया सा पोहा।
0: पोहा? और लंच में?
1: लंच में खाया है मैंने रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सभी कुछ खाया और साथ में दही।
0: और सलाद खाया कि नहीं खाया?
1: वो तो जरूरी है, सलाद के बिना तो मजा नहीं आता खाने का।
0: और जब हम नाश्ता करते हैं तो अंकुरित भोजन भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अच्छा पोषण जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो अक्सर ऐसा करती हूँ ना कि अपने पोहे में थोड़ी सी अंकुरित मूंग की दाल है ना, और या कुछ इस तरीके की चीजें अंकुरित जो होते हैं, चने होते हैं, वो कुछ मिक्स करके अच्छे से एक नई तरीके की रेसिपी बना लेती हूँ। उसमें टमाटर वगैरह डाल के काट के बहुत अच्छा सा बन जाता है।
0: क्या
1: खाने में स्वाद होता ही है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है।
0: सबसे बड़ी बात है कि हमें जो भी खाना है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होना चाहिए। और इन दिनों हम पोषण सप्ताह मना भी तो रहे हैं, और देखिए कहते हैं कि अगर बचपन में हमने पौष्टिक भोजन कर लिया है तो ताउम्र हम स्वस्थ रह सकते हैं।
1: बिल्कुल, वो ग्लो जो होता है ना, वो हमें बाहर से लाने की जरूरत
0: नहीं होती है कि हम बड़े ब्रांड के पाउडर, क्रीम, काजल ढूंढते हैं बाहर जा जाके, खास तौर से महिलाएं। जब हम मेकअप से जो है लिपा पुता चेहरा लेकर बाहर निकल तो जाती है, लेकिन असलियत तो सामने आ ही जाती है।
1: बिल्कुल,
0: आपके भीतर जो चल रहा है वो सामने आ जाता है आपके चेहरे पर। अगर आप भीतर से कमजोर है तो वो आपका चेहरा बता देता है।
1: बिल्कुल बता देता है कि कहाँ आपको किस चीज की कमी हो रखी है।
0: हाँ, आपको सही भोजन मिलना चाहिए, सही पोषण से हमें ऊर्जा मिलती है और बीमारियों से लड़ने की एक शक्ति मिलती
1: बिल्कुल।
0: है।
1: बिल्कुल, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो एकदम सही बना रहता है।
0: हाँ,
1: तो जो बीमारियां हैं वो जल्दी हमें इफेक्ट नहीं करती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब बात चली कि बचपन में हमें अच्छा भोजन अगर मिल जाए तो उसकी बात ही अलग है, तो हम अपने खासतौर से सखियों से कहना चाहेंगे कि हम पूरा दिन घर की साफ सफाई, घर को सुंदर चमकाने में, कार को चमकाने में, स्कूटी चमकाने में, टीवी को चमकाने में लगा देते हैं, या फिर कई बार खुद को भी चमकाने में लगा देते हैं
1: जी,
0: है ना। लेकिन जो हमारे भीतर का जो है ना तत्व, उसे हम नहीं संभालते हैं। तो अच्छा भोजन करें, अच्छा पोषण लें, और खास तौर से दिखावे की दुनिया से बाहर निकलकर सबसे जरूरी बात है कि समय पर उचित और स्वच्छ भोजन ग्रहण करें, अपने घर वालों को भी खिलाएं, खास तौर से अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो और भी हमें ध्यान देना चाहिए
1: जी। क्योंकि ना जब हम खुद देख सकते हैं ना कि अगर हम संतुलित भोजन की बजाय कुछ बाहर या जंक, मतलब बहुत इस बाहर की जो चीजें हम खाते हैं तो उससे क्या होता है ना, और जब हम घर की सिर्फ बनी हुई चीजें खा रहे होते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। एकदम पीला पड़ा सा चेहरा या हमारा वेट बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: जबकि घर की चीजों को हम अगर खा रहे होते हैं, संतुलित भोजन खा रहे होते हैं ना, तो हमें बाकी चीजों से छुटकारा मिल जाता है।
0: और सबसे बड़ी बात, जो बीमारियां आजकल चल रही है ना, वो इसी कारण है कि हम जंक फूड पर बहुत विश्वास करने लग गए हैं, डिब्बा बंद खाना देखने लग गए हैं, 2 मिनट जो खाना बनने लग गया है उस पर ज्यादा विश्वास करने लगे। देखिए रिजल्ट सामने है, हम लोग बीमार रहते हैं, इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, तो ये सभी कारण है। तो इसलिए हम ज्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहेंगे कि अच्छा खाएं, अच्छा बनाएं, अच्छा पकाएं, और अपने बच्चों को, घर परिवार वालों को अच्छा पोषण भी दें।
1: बिल्कुल।
0: तो आज की विषय क्या है ये भी लगे हाथों बता दें, तो उसके बाद एक प्यारा सा गीत हम पेश करते हैं।
1: हाँ, आज हम विषय भी लेकर आए क्योंकि पोषण सप्ताह चल रहा है, तो वृद्धावस्था और पोषण की जब हम एक एज में पहुंच जाते हैं तो उस वक्त हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप भी अपने सुझाव भेजिए, और साथ ही कहानी पद्मश्री के अंतर्गत हम बात करेंगे आज निधुमोलू सुमति जो कि कला क्षेत्र में है, और मुझे कुछ कहना में आज बहुत मजेदार बात होने वाली है।
0: क्या?
1: वो है बचपन के मजेदार अंधविश्वास।
0: वही
1: ना कि आपने ये बीज खा लिया, अब तो बस पेड़ निकलेगा, क्योंकि पानी तो हम पी रहे हैं तो पानी की जरूरत पड़ती है, तो अब ये बीज बस
0: पेड़ निकलेगा, पेट में निकलेगा। और हम सच्ची मान भी
1: मान लेते,
0: डर भी जाते थे, या दांत टूट जाता तो कहते अरे चूहा ले गया इसका दांत, कहां ले गया, है ना। तो हम दांत को तोड़ के गड्ढा खोद के अंदर डाल देते थे, एक अंधविश्वास की ना, हमारा दांत कोई ले न जाए चूहा। तो आपके जीवन में भी इस तरह की बातें हुई होंगी जहां आपको इस तरह से बताया होगा कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, या अपने
1: आप
0: बच्चों
1: बताते
0: हैं
1: ऐसा
0: अपने बच्चों को, है ना
1: जी। तो बताइए हमें, और साथ ही हम बात करेंगे कुछ अच्छे टिप्स के बारे में जो कि रसोई को चमकाने में सहायक हो सकते हैं।
0: रसोई को चमकाने में मतलब
1: मतलब हमारी रसोई चमकती रहे ना, एकदम बढ़िया रहे, एकदम साफ सुथरी रहे, हाँ। उसके लिए क्या टिप्स हो सकते हैं, हाँ। उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं।
0: बिल्कुल, कैसे आप अपनी रसोई को साफ सुथरा,
1: तो आप हमें अपने सुझाव भेजिए, आप क्या करते हैं अपनी रसोई को चमकाने के लिए।
0: रसोई को गंदा तो नहीं रखते हैं, है ना। आजकल इस पर भी काफी चर्चा हो रही है कि खाद्य पदार्थों में जो मिलावट, जो गंदगी या अस्वच्छता का जो माहौल है, उस पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। तो आप अपने घर की रसोई को कितना साफ सुथरा रखती हैं, ये हमें बता सकती हैं।
1: बिल्कुल।
0: और अब हम क्या कर सकते हैं,
1: एक गीत सुन सकते हैं।

0: बहुत सुंदर गीत हमने सुनवाए हैं अपने श्रोताओं को आरती
1: जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा गीत था।
0: हाँ, और संगीत भी कहते हैं कि वैसा ही काम करता है जैसा कि आपके जीवन में
1: बिल्कुल खाना हो या दवाई हो क्योंकि हम खाने की बात कर रहे हैं, इसलिए आज मैं बात में आपको कह रही होंगी ना, खाने की बात इस,
0: हाँ, खाना बहुत याद आ रहा है आज और मुझे तुम्हारा पोहा भी याद आ रहा है जिसमें तुम दुनिया भर की अंकुर दालें डाल के खा जाती हो चुपचाप से, और वो राज तुमने आज खुला है हमारी सखियों से।
1: बना के लाऊंगी आपके लिए।
0: चलिए देखते हैं। तो बात चल रही थी पोषण की, पोषण सप्ताह भी चल रहा है और पोषण पर हम कितना ध्यान दे पाते हैं अपने जीवन में। अभी हमने कहा कि घर के जो, वैसे तो सभी सदस्यों को अच्छा पोषण लेना चाहिए, लेकिन खास तौर से जो नवजात शिशु हैं या बच्चे हैं, बढ़ते हुए बच्चे हैं, और हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पोषण कैसा हो, आज विशेष रूप से हम वृद्धावस्था और पोषण पर बातचीत करना चाहते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो जहां अनुभवों की एक दौलत होती है ना, वो कौन सी उम्र होती है ना, वो एक जो उम्र हम वहां पहुंच जाते हैं ना, तो अनुभवों की उम्र होती है, उसको वृद्धावस्था कहते हैं। तो कहा जाता है कि उम्र का बढ़ना जीवन की एक प्रक्रिया है, लेकिन स्वस्थ रहना हमारी सजगता और सावधानी का परिणाम होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, तो शरीर में कई सारे प्राकृतिक परिवर्तन भी आने लगते हैं, क्योंकि जो आते ही हैं हमेशा, तो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता भी बदल सकती है और मांसपेशियों की ताकत भी कम हो सकती है और पाचन और भूख में भी बदलाव महसूस हो सकता है। इसलिए इस उम्र में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आरती कि संतुलित और जो पौष्टिक आहार है वो हमारे बुजुर्गों को सक्रिय रहने और शरीर की ताकत बनाए रखने

0: रखने और दैनिक जीवन को बेहतर ढंग से जीने में मदद भी करता है। और इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भोजन में क्या शामिल हो। जैसे शरीर की मांसपेशियों और ताकत के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है, तो जब गृहिणी भोजन बनाए तो उसे पता होना चाहिए कि हमारे घर के भोजन में दालें हो, दूध हो, दही हो, पनीर हो, और जो नॉनवेज खाते हैं, मान लीजिए अंडा खाने का भी आपकी आदत हो अंडा खाना, तो आप इसको भी हिस्सा बना सकते हैं। और इसके अलावा फल है, सब्जियां हैं, अच्छी मात्रा में आप खा सकते हैं रंग बिरंगे फल सब्जियां। ये जो है भोजन को पौष्टिक बनाते हैं और इनमें कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे घर के वृद्ध हो वो नानुकुर भी करते हैं,
1: बहुत ज्यादा
0: ये पसंद नहीं है, ये मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं है, उन्हें समझाना है कि साबुत अनाज और रेशेदार भोजन वृद्धावस्था में आपके पाचन को बेहतर बनाता है और इसमें जो हड्डियों का आपका जो स्वास्थ्य है वो भी खास अच्छा हो जाता है। दूध है, दही है, ये खाद्य पदार्थ आहार का हिस्सा बनाए जाने चाहिए।
1: बिल्कुल। और किसी विशेष जो कोई विशेष जो पोषक तत्व होता है कि उसकी आवश्यकता होती है, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के हिसाब से अलग अलग होती है।
0: हाँ।
1: किसी के अंदर किसी की चीज की कमी हो सकती है, किसी के अंदर किसी चीज की कमी हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए डॉक्टर या योग्य पोषण विशेषज्ञ की सलाह लेना भी बहुत जरूरी होता है कि क्या हम खाएं कि वो उससे उसके जरिए हमारी जो पोषण आवश्यकता है वो पूरी हो सके। तो इसके साथ अक्सर ये भी देखते हैं कि बुजुर्ग जो है वो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी भूल जाते हैं और शरीर को तरल पदार्थों की आवश्यकता होती ही है। इसलिए दिन भर उचित मात्रा में पानी और अन्य स्वास्थ्य जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे कि जूस हो गया, तरह तरह के फलों के, तो वो लेना भी बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और वृद्धावस्था में स्वास्थ्य बेहतर बनाकर कहते हैं कि उम्र को भी आप मात दे सकते हैं, है ना। कई बार हम देखते हैं ना, कुछ लोग बड़ी उम्र के होते हैं लेकिन कहते
1: पता
0: हैं
1: नहीं चलता है।
0: पता ही नहीं चलता है। एक एड भी आया करता था, है ना, इतने साल के बुजुर्ग या जवान।
1: हाँ।
0: तो मतलब लगता था कि अरे इतने बुजुर्ग आदमी भी जवान की तरह दौड़ते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये आप अपने भोजन पर ध्यान रखकर कर सकते हैं। संतुलित भोजन लें, भोजन बिल्कुल ताजा और साफ सुथरा होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि बहुत अधिक नमक है, कई बार ऊपर से नमक डालने की जो हमारी गंदी आदत है ना, उससे हमें बचना चाहिए। बहुत मीठी चाय, चीनी डाल
1: एकदम, कुछ लोग एकदम
0: शरबत पी रहे हैं जैसे, है ना, वो कैसे पीते हैं पता नहीं। और अत्यधिक जो तले भुने खाद्य पदार्थ हैं उनका भी सेवन हर बार नहीं करना चाहिए। कभी कभार आपकी इच्छा हो गई एक अलग बात है।
1: और इसके साथ साथ भोजन को व्यक्ति की चबाने और पाचन की क्षमता के अनुसार ही तैयार करना जरूरी है। जो भी भोजन बना रहा है ना, या आप खुद भी बना रहे हैं तो अपने हिसाब से उस हिसाब से आप भोजन को बनाएं। जैसे कि दांतों की समस्या होने पर नरम और पौष्टिक भोजन को ही चुनना चाहिए और भोजन का समय नियमित रखने की बहुत कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भोजन का अनुशासन जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है।
0: बिल्कुल। आप अगर एक समय निश्चित कर लेते हैं तो शरीर उसी हिसाब से आपको रिप्रेजेंट भी करता है कि किस तरह से शरीर वो आपको संकेत दे देता है कि भोजन का वक्त हो गया, भोजन कर लेना।
1: बिल्कुल। आपके पेट में गुड़गुड़ होने
0: लग जाती है और कई बार पता हम देर कर देते हैं तो फिर कई और दूसरी सिम्टम्स हमें परेशान करते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि समय पर खाना नहीं मिलेगा तो हमें एसिडिटी हो जाएगी
1: या सिर में दर्द हो जाएगा।
0: सिर में दर्द हो जाएगा। तो समय समय पर आप भोजन लें और साथ में ये भी ध्यान रखें कि अच्छे भोजन के साथ हल्की शारीरिक जो एक्सरसाइज है, वो गतिविधि है जिसे हम कहते हैं, वो भी आप करते रहे अपने स्वास्थ्य के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से। टहले, है ना, दिनचर्या का आपकी हिस्सा होना चाहिए टहलना। हाँ, किसी नई व्यायाम योजना को शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
1: बिल्कुल। और वृद्धावस्था कमजोरी का नहीं बल्कि अनुभव, समझ और जीवन की उपलब्धियों का समय होता है। सही पोषण, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त पानी, उचित गतिविधि और परिवार का स्नेह, ये सभी मिलकर जीवन को अधिक स्वस्थ और सुखद बना सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि स्वस्थ भोजन शरीर को शक्ति देता है और अपनों का प्यार जीवन में ऊर्जा भर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बात जो अभी आपने कही ना कि दांतों की जो समस्या एक उम्र के बाद शुरू हो जाती है, तो जो घर में खाना बनाने वाली है उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से अपने घर के बुजुर्ग को वो खाना दें। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने खाना तो रख दिया लेकिन उन्हें चबाने में बहुत टाइम लग जाता है। कई बुजुर्ग हमने देखे घंटों खाते हैं उस खाने को, ठंडा हो जाता है खाना, बेस्वाद हो जाता है क्योंकि वो चबा नहीं पाते। तो ऐसे समय में आप ध्यान रखिए, उसको रोटी है तो चूर के दें, चावल है, दाल चावल है, दलिया है, खिचड़ी है, ऐसा दें ताकि जो बुजुर्ग है वो उसे आराम से खा सके।
1: बिल्कुल।
0: थोड़ी खाना बना के रख दिया
1: और गर्म रहेगी रोटी तो कड़ी नहीं होगी,
0: कड़ी नहीं होगी। आपने फटाफट रख दिया कि मैंने तो अपना खाना पूरा दे दिया है, अभी खाएंगे। जब वो खाते खाते खाते खाते घंटों बीत जाते हैं क्योंकि उनके दांत काम नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात है जैसे कि प्रोटीन युक्त जो दूध है, दही है, पनीर है, दालें हैं, अंकुरित है, अनाज जो है, अंडा है,

0: आप ले सकते हैं। हरी सब्जियां हैं, फल हैं, विटामिन और मिनरल्स के लिए आप ये ले। साबुत अनाज जैसा कि रोटी खा सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, ओट्स का दलिया आप खिला सकते हैं। पानी तो आपने भी बताया कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, समय समय पर बुजुर्गों को याद दिलाते रहें। और कैल्शियम और विटामिन डी ये भी जरूरी है हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए। और कम नमक की बात आपने बताई, और सबसे बड़ी बात कम चीनी, और हो सकता है तो चीनी छोड़ ही देना एक समय बाद। क्या जरूरत है चाय में चीनी डालने की या बहुत ज्यादा मीठा खाने की, क्योंकि आपका जो ब्लड प्रेशर है और आपकी जो शुगर है वो नियंत्रित रहेगी। तो जो बुजुर्ग हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आसानी से पचने वाला संतुलित भोजन उन्हें करवाना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो नहीं कर सकते ना, अगर ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं तो। घर में जो भी गृहिणी है या बाल बच्चे हैं वो ध्यान रखें घर के बुजुर्गों का, और समय समय पर उन्हें गर्म भोजन दें और स्वच्छ भोजन दें।
1: बिल्कुल, और इसी बात को लेकर हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भेजा भी हमें लिखकर। तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि वृद्धावस्था में सुपाच्य स्वास्थ्य वर्धक भोजन करना चाहिए, फल और सब्जी अधिक खाने चाहिए, तले भुने भारी भोजन नहीं करने चाहिए, सूखे मेवे कद्दू के बीज रात भर पानी में भिगोकर सुबह नाश्ते में लेने चाहिए।
0: और क्या लिखा है, कुछ और भी लिखा है?
1: हाँ बिल्कुल, लिखा है कि मैंने आज अंकुरित, हाँ उन्होंने अपना खुद का लिखा है कि मैंने आज अंकुरित मूंग और चने को पीस कर उसके चीले बनाए, बहुत बढ़िया। वृद्धो ऐसे भी सीनियर्स को अंकुरित अनाज थोड़ा उबाल कर खाना चाहिए, उसमें कुछ भुने हुए सीड्स दो होते हैं और हल्के से चाट मसाला या नींबू का प्रयोग करें। प्रोटीन को पचाने के लिए कुछ रसेदार जो सिट्रिक जो फल होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, तो उनको आप उनका सेवन करें। तो इन्होंने इतना अच्छा चीला बनाया भाई,
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल हमें प्रयोग करते रहने चाहिए ताकि घर के बुजुर्ग स्वस्थ रहे और दूसरे जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके लिए भी आप बनाएं।
1: बिल्कुल
0: है ना, चूंकि बात वृद्धावस्था की चल रही है इसलिए उनको खास ध्यान दिया जा रहा है कि वृद्धावस्था में पोषण का कितना बड़ा योगदान है। एक श्रोता लिखते हैं कि वृद्धावस्था और पोषण बहुत बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। बूढ़ा होने पर भूख और ऊर्जा कम होने लगती है, इसलिए कुछ नया खाने की इच्छा होती है। इस सब्जेक्ट से पहले कविता सुनाना चाहता हूं। वो यारों की हंसी ठिठोलियां, वहां नेताजी का बुत लग गया, देखो विकास सब चर गया, चौमासे बरसाती नदी वहां बन गया, नदी अब बन गई नाला, नाले भी हो गया गड़बड़ झाला। कुछ कविता लिखने की कोशिश की है और लिखते हैं कि हमारे दादी के घर वहां सब्जी रोटी और घी साथ होता है, मतलब कि घी से सनी रोटी हम खाते हैं सब्जी के साथ।
1: अच्छा ये भी तो, अच्छी चीज है, घी खाना ही चाहिए। ये सोचते हैं लोग कि ना घी खाने से मोटे हो जाएंगे, नहीं, आप घी खाइए उससे आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं।
0: हाँ लेकिन घी हरे, वही बात होती है कि आपका शरीर क्या कहता है, अपने शरीर के संकेतों को ध्यान में रखिए कि घी पचता भी है कि नहीं।
1: हाँ बिल्कुल, हल्का फुल्का ही खाए, बहुत ज्यादा नहीं
0: हिसाब से। और एक श्रोता लिखते हैं कि वृद्धावस्था जीवन का वो चरण है जब व्यक्ति उम्र के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है। इस अवस्था में बुजुर्गों को परिवार के प्यार सम्मान देखभाल और सहयोग की आवश्यकता होती है। उनका अनुभव और जीवन की सीख समाज के लिए बहुत मूल्यवान होती है। हमें हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी जरूरतों का ध्यान भी रखना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये उम्र ही ऐसी होती है जब व्यक्ति को पर्याप्त पोषण की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि उनके खाने में सभी प्रकार की दालें, चावल, प्रोटीन से युक्त चीजें और कैल्शियम की कमी उनको न होने पाए। इसके लिए दूध वगैरह ये सब जरूर शामिल करें उनके खानों में, और ध्यान रहे कि उन्हें ऐसी चीज दें जो उनको सूट करती हो। ये चीज बहुत ध्यान रखने योग्य है कि इस उम्र में कुछ भी खिला देना बुजुर्गों को सूट नहीं करता है, इसलिए कोई भी ऐसा खाना न दे जो उनके सेहत से खिलवाड़ करे।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि कुछ अच्छा कुछ टेस्टी वैरायटी खाना हफ्ते में एक बार ठीक रहता है, और सप्ताह में एक दिन सिर्फ दूध फल फ्रूट खाना अच्छा होता है, नमक और चीनी फ्रूट वाले दिन परहेज करनी चाहिए, और मैंने करके देखा है तो लग रहा है कि ये सेहत के लिए ठीक है। सेहत ठीक रहे तो दुनिया अच्छी लगती रहेगी, बचपन के ये सब बातें इन्होंने लिखी है।
0: ये बात तो सही कहा इन्होंने, अगर सेहत ठीक है ना आरती,
1: सब कुछ अच्छा लगता है,
0: सब कुछ अच्छा लगता है। अगर सेहत सही नहीं होती ना तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी सब बेकार लगता है।
1: बिल्कुल। और अभी एक गीत सुने तो और अच्छा लगेगा,
0: अरे हमारी सेहत और अच्छी हो जाएगी।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तो आरती, जब हम स्वस्थ होते हैं ना तो ऐसा ही लगता है ये जमी गा रही होती है, आसमान गा रहा होता
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: हर जगह संगीत सुनाई
0: देता है। बिल्कुल सही कहा।
1: और आज हम बात करने जा रहे हैं किनकी, नीदुमोलु सुमति की, जो कि कला क्षेत्र में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाई है। तो पद्मश्री के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं इनकी। तो आज हम बात कर रहे हैं नीदुमोलु सुमति की, जिन्हें दंडामुड़ी सुमति के नाम से भी जाना जाता है। भारत की प्रसिद्ध मृदंग

0: गीतम वादिका और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की वो बहुत बड़ी कलाकार हैं और वो भारत की शुरुआती महिला मृदंगम वादकों में गिनी जाती हैं।
1: क्या बात है।
0: और लय विन्यास की पहली महिला कलाकार के रूप में भी उनका उल्लेख है और इनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1950 को आंध्र प्रदेश के एलुरू में।
1: सबसे बड़ी बात। और देखिए ना, मृदंग बजाना, अरे बड़ा मुश्किल काम है। ज्यादातर हमने पुरुषों को ही देखा है, लेकिन महिलाओं ने भी बहुत जगह अपने जो है कदम रख दिए हैं।
0: बहुत ताकत लगती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर कैसे मृदंग बजाते
1: हैं। गजब गजब। तो जब निधु मोलू सुमति को हम सुनते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं। और पता चला कि इनके जो माता पिता है, निधु मोलू राघवैया और निधु मोलू वेंकट रत्नम्मा इनके माता पिता है, और उनके पिता स्वयं मृदंगम के विद्वान थे। उन्होंने सुमति की संगीत प्रतिभा को बचपन से प्रोत्साहित किया और सुमति ने 6 वर्ष की उम्र में मृदंगम सीखना शुरू कर दिया
0: बहुत
1: था।
0: बहुत
1: उनके पिता उन्हें संगीत कार्यक्रमों में ले जाते थे, जिससे उन्हें मंच और शास्त्रीय संगीत की दुनिया को करीब से समझने का भी मौका मिला।
0: बिल्कुल। और लगभग 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सुमति ने मृदंगम में प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी पूरा किया और 1964 के बाद उन्होंने प्रसिद्ध मृदंगम कलाकार दंडामोड़ी राममोहन राव से प्रशिक्षण लिया और राममोहन राव आगे चलकर उनके गुरु के साथ साथ उनके जीवन साथी भी बने। अपने गुरु से उन्होंने मृदंगम की जटिल तकनीकों, लय, ताल और प्रस्तुति की बारीकियों को बहुत अच्छी तरीके से सीखा।
1: बिल्कुल सही कहा। और लगातार जब अभ्यास के कारण वे धीरे धीरे संगत कलाकार से स्वतंत्र और एकल प्रस्तुता के रूप में स्थापित हो गई। निधु मोलू सुमति की यात्रा जो है केवल एक सफल संगीतकार की कहानी मात्र नहीं है आरती। उन्होंने ऐसे समय में मृदंगम को पेशेवर के रूप में अपनाया जब इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। उन्होंने निरंतर अभ्यास, अनुशासन और प्रतिभा के बल पर यह साबित किया कि कला में सफलता का आधार साधना, समर्पण और योग्यता है।
0: बिल्कुल। उनकी उपलब्धियों ने मृदंगम जैसे पारंपरिक वाद्य के प्रति नई पीढ़ी की रुचि बढ़ाने और महिला कलाकारों के लिए रास्ते खोलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मृदंगम पारंपरिक रूप से पुरुष कलाकारों का प्रमुख क्षेत्र माना जाता रहा है। ऐसे वातावरण में भी सुमति ने अपने प्रतिभा और निरंतर साधना से अलग पहचान बनाई। उनके वादन में ताल की सटीकता, लय की जटिलता और प्रस्तुति का संतुलन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा।
1: बिल्कुल सही कहा। और अपने लंबे संगीत जीवन में सुमति ने अनेक प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय संगीत कलाकारों के साथ मृदंगम पर संगत भी की, जैसे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, महान गायिका सुभा लक्ष्मी, डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण, जोशी, चिट्टी बाबू, एन रमणी और यू श्रीनिवास जैसे प्रमुख नाम जो है हम शामिल करते हैं। और इससे उन्हें देश के प्रमुख संगीत मंचों पर अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिला। साथ ही मृदंगम वादन से उनकी प्रतिष्ठा जो है वो भी बहुत ही मजबूत हुई।
0: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, अभी हम लोग का समय हो रहा है एक अंतराल का,
1: और ले दी एक अंतराल
0: बात।

0: इस अंतराल के बाद सभी हमारी सखियों और सखाओं का स्वागत है। तो बात चल रही थी मृदंगम की।
1: बिल्कुल, और हम बात कर रहे थे सुमति जी की, जो मतलब उनकी मृदंग को सुनकर ना ऐसा लगता है कि सारे दिमाग के पूरे शरीर के तार एकदम झनझना उठे।
0: मैं तो पता है उनके बारे में बात करते करते खो भी गई हूँ। मुझे लग रहा है कि उन्हें सामने मृदंग बजाते हुए देख रही हूँ। इतना मतलब गहरा उनका अभ्यास जब देखा और पढ़ा तो लगता है कि कितना कलाकार खुद को मानता है, तब जाकर वो एक अच्छा
1: कोई तपस्या ही तो है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और सुमति ने वर्ष 2000 में लय वेदिका नामक संस्था की स्थापना की। उनकी इस संस्था का उद्देश्य मृदंगम और ताल प्रधान संगीत को प्रोत्साहित करना था। संस्था के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताएं

0: और संगीत संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रतिभाशाली कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। इस पहल से उनकी भूमिका भारतीय ताल परंपरा के संरक्षण और नई पीढ़ी को प्रेरित करने वाली मार्गदर्शक की बन गई।
1: बिल्कुल। और वर्ष 2015 में सुमति ने सता मृदंगा वाद्य निवाली नामक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें लगभग 100 मृदंगम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर उनके गुरु और जीवन साथी दड़ामुड़ी राममोहन राव को श्रद्धांजलि दी। और ये कार्यक्रम उनके संगीत जीवन की उल्लेखनीय पहलों में गिना जाता है। सुमति को उनकी कला के लिए कई सम्मानजनक उपाधियों से भी संबोधित किया गया है।
0: बिल्कुल। उनकी उपाधियों की बात करें तो मृदंग शिरोमणि, मृदंग महारानी, नाद भागीरथ, मृदंगालय विद्यासागर, मृदंग विन्यास, कला भारती और नादलय साम्रागी जैसी उपाधियां शामिल हैं। निदुमोलु समिति को उनके लंबे संगीत सफर में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें मद्रास म्यूजिक एकेडमी का बेस्ट मृदंगिस्ट अवार्ड, पालानी सुब्रमणिया पिल्ले मेमोरियल पुरस्कार उनको मिला और बहुत सारे पुरस्कार उनको मिले हैं।
1: बिल्कुल। और इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी चेन्नई का बेस्ट मृदंगिस्ट अवार्ड, बेस्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया अवार्ड, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, उगादी पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार का, पालानी सुब्रमणिया पिल्ले मेमोरियल अवार्ड और वर्ष 2021 में भारत सरकार ने निदुमोलु सुमति को पद्मश्री से सम्मानित भी किया।
0: वो है भी इतने सारे इन पुरस्कारों के को बहुत ज्यादा उनके मिलने भी चाहिए। इतना उनका जो पूरा व्यक्तित्व है ना, पूरा व्यक्तित्व प्रेरणादायक है।
1: बिल्कुल। ऐसी महान कलाकार को हम सैल्यूट करते हैं।
0: बिल्कुल।

0: गीत ने जो है झूमने पर मजबूर कर दिया।
1: बहुत प्यारा गीत
0: है ना।
1: और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं अपने बचपन की तरफ थोड़ा सा जाने वाले हैं, है ना। और हमें
0: बचपन की तरफ जाने वाले हैं, अभी कार्यक्रम शुरू हुआ तब से हम बचपन की तरफ ही थे।
1: सही बात है। और हमारे जो सखी हैं, जो सखाएं, सब अपने अपने किस्से लिख के भेज रहे हैं, बता रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं कि किस तरह से उनको भी ये अंधविश्वास थे बचपन में।
0: हाँ,
1: जो हमें सिर्फ हमें नहीं थे,
0: उन्हें भी थे। लेकिन ये बात भी पक्की कि बचपन में हमें नहीं पता होता कि अंधविश्वास है, हमें बताया जाता है अरे ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा।
1: सच में वो डर रहता है।
0: हाँ, तो अंकित हो जाते थे। हाँ, इस बाल मन पे ना, अरे ऐसा नहीं करते। फिर बड़ों के हम भी वही बात आगे कहते रहे। तो ये बचपन में हमें जिस तरह से समझाया गया, डराया गया, सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो हम बचपन में समझते थे सचमुच गब्बर सिंह आने वाला है।
1: हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई आगे पकड़ लेगा अगर सोए नहीं तो।
0: तो सब चीजें हमें बताई जाती थी, कही जाती थी, जिसे हमारे मन में हम अंकित कर लेते थे। बाल मन था हमारा। तो वो अब जब बड़े हो गए हैं तो हमें हंसी आती है कि अरे हम कैसे किया करते थे। तो क्या लिखते हैं श्रोता?
1: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन में ऐसा था कि बहुत भोला बहुत होता है बचपन, किसी भी बात पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जब हम भाई बहन छोटे थे तो थूजा के पेड़ की पत्तियों को, जिसे हम लोग विद्या का पेड़ भी कहते थे, अपनी किताब में रख लेते थे क्योंकि उससे विद्या आ जाती है, ऐसा हम लोगों को अंधविश्वास था। और जिस विषय में ज्यादा डर लगता था उसमें खूब सारी पत्तियां रख लेते थे कि अब कितनी विद्या है ये तो पता नहीं, मतलब पत्तियां रख लेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे,
0: पढ़ाई नहीं करके भी हम
1: विद्या आ जाएगी हमारे अंदर।
0: हर पेज के अंदर मोर पंख भी हम रखा करते थे बचपन में। सहेलियां देखती थी किसकी किताब में कितने मोर पंख हैं, कॉपियों में कितने मोर पंख हैं ना। और कई बार पेड़ जो पत्तियां हैं वो भी हम रखा करते थे। कई बार शौकिया भी रखते थे, किसी पेड़ की जो पत्ती हमें पसंद होती थी ना, उसका कलेक्शन करके भी हम लोग अपनी नोटबुक में
1: जब पीली पड़ जाती थी उसको अच्छा लगता था देखने में।
0: तो ये ऐसा भी होता था। और एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन की वो दुनिया जहां न मोबाइल था, न इंटरनेट की चिंता थी, न सोशल मीडिया का दबाव था, बस शरारती थी, खेलकूद, दादी नानी की कहानी और उनके बताए कुछ ऐसे नियम जिन्हें हम बिना कोई सवाल किए सच मान लेते थे। याद है बचपन में अगर कोई कहता था कि रात में नाखून मत काटो तो हम तुरंत नाखून काटना बंद कर देते थे। कोई पूछता क्यों तो जवाब मिलता बस मत काटो, अच्छा नहीं होता। अब हमें ये जानने की फुर्सत ही कहां कि अच्छा क्यों नहीं होता, बड़ों ने मना किया है मतलब जरूर कोई बहुत बड़ी बात है।
1: और एक हमारे श्रोता है लिखते हैं कि फल जो होता है उसका बीज अगर निकल जाओगे तो पेट में पेड़ उग जाएगा।
0: हाँ
1: ऐसा होता था ना।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और श्रोता लिखते हैं कि अगर आंख फड़क जाए तो जो है घर में कोई भविष्यवाणी शुरू हो जाती थी कि कुछ अच्छा होने वाला है, नहीं नहीं कुछ खबर आने वाली है। भी दाई आंख फड़की कि बाई आंख फड़की
1: ये जरूर पूछा जाता था कि आंख कौन सी फड़की है।
0: डर के मारे पता क्या करते थे, उसके ऊपर कागज काट के छोटा सा आंख पर चिपका लेते थे, हमें ऐसा कहा जाता था। और झाड़ू पर पैर मत रखो की बहुत सारी बातें हमें कही जाती थी, लेकिन हमने कभी पूछा नहीं क्यों, बस हमने उसको सत्य मान लिया।
1: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे समाज जो परिवार में ये प्रथा रही कि किसी बच्चे का दांत टूट जाता था तो हमें ये सिखाया जाता था कि दांत टूटने पर उस दांत को चांद के सामने ये प्रार्थना करनी होती थी कि हे चांद बाबा मैं तुझे पुराना दांत दूं और तू मुझे नया दांत दे, इस तरह से कहना होता था। और ऐसा विश्वास था कि दांत चांद बाबा कुछ दिनों बाद हमें नया दांत भी दे देते थे। ऐसे हमारे बुजुर्ग हमें प्रेरित करते कहते थे कि आप हमारा ये दांत ले लीजिए और हमें दूसरा
0: दांत दे दीजिए। तो मुझे अपना भी याद है आरती, जब मेरा दांत टूटा था मैं सूरज देवता के सामने खड़े होके कहती सूरज देवता मेरा ये दांत टूट गया है मुझे नया दांत दे दो ना। तो ये क्योंकि कहा गया होगा ऐसा, और मुझे वो सीन अब याद हो आया कि मैंने भी बचपन में ये किया है ना। अब समझ आता है कि हम कितने भोले हुआ करते थे, जैसा कहा जाता था हम मान लिया करते थे।
1: और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो उसका निदान था कि अपनी उंगलियों से हवा में क्रॉस बनाओ या स्वास्तिक एक बना दीजिए आप।
0: अच्छा।
1: तो उससे मतलब उसका प्रभाव हट जाता है। तो ये बिल्ली वाला तो आज भी चल रहा है
0: कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है
1: कितना भी जरूरी काम क्यों ना हम वहीं रुके रहते हैं।
0: बिल्कुल
1: खिलते नहीं।
0: कैसा दिमाग में अंकित हो गई है कुछ चीजें, उनके तर्क कुतर्क अगर हम करने लगे तो फिर बहुत सारी बातें निकल आती हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम झाड़ू को देखकर ऐसे निकलते थे जैसे घर में कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठा

0: हो। इसके अलावा बचपन में उल्लू, छिपकली, छींक, रास्ते में कोई चीज मिलना, इन सबके हाँ। भी अपने अपने मतलब बताए जाते थे। और अगर घर से निकलते समय किसी ने छींक दिया तो हम रुक जाया करते थे। हाँ। ये तो होता था,
1: ये तो आज भी होता है।
0: दोबारा छींको, दूसरी छींक, अरे दो छींक आई है, अब निकलो।
1: हाँ।
0: है ना, कितना
1: बहुत बहुत सारी चीजें।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि जब हम छोटे थे तो ये बात पता नहीं किसने फैलाई थी कि पेंसिल के छिलके दूध में भिगोकर रखने पर उससे इरेजर बन जाता है, मतलब रबड़ बन जाती है। तो हम बच्चे पेंसिल के छिलके दूध में भिगो कर रख देते थे, हालांकि कभी भी उससे इरेजर नहीं बना। ये चीज तो मैंने भी करी हुई है। कुछ नहीं बनता उससे, सिर्फ डांट पड़ती है, थप्पड़ पड़ते हैं।
0: लेकिन ये देखिए बचपन के वो दिन हम याद कर रहे हैं जिन्हें हम कई बार भूल भी जाते हैं, और आज उस टॉपिक के माध्यम से वो दिन याद आने लगे हैं। और लिखते हैं कि एक श्रोता कि सच तो ये है कि इन बातों में से बहुत सी बातें हमें बचपन में सच लगती थी, आज हम बड़े हो गए हैं, तर्क और विज्ञान को समझने लगे हैं, हमें किसी भी बात को बिना सोचे समझे सच नहीं मानना चाहिए, लेकिन इन पुरानी बातों की याद आते ही चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाती है। हमें तो हंसी आ रही है,
1: बिल्कुल
0: मुस्कान तो क्या कहें, क्योंकि ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं थे, ये हमारे बचपन की यादों का हिस्सा थे। दादी नानी की सख्त हिदायतें थी, माँ की डांट और हमारी मासूमियत थी।
1: बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक श्रोता जी लिखते हैं कि जब मैं स्कूल में था उस समय से मुझे इंडिया की जो नेशनल टीम है उसके मैच देखने का बहुत दीवानापन था, तो मुझे अंधविश्वास था कि अगर टेलीविजन पर मैं लाइव मैच देखूंगा तो इंडिया की जो टीम है वो हार जाएगी। इसे टीवी बंद करके मैं रेडियो कमेंट्री सुना करता था। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बहुत अच्छा किया। और ऐसा मेरे साथ कई बार सच में हुआ भी था। बाद में अगर उस समय मैच के मुख्य अंश दिखाए जाते थे तो टेलीविजन पर देख लेता था। अब क्रिकेट मैच में मैं इंजॉयमेंट के लिए लाइव हूं, पर अंधविश्वास नहीं है, जो मैच जीते वही सिकंदर।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि इतना हमें पैशन रहता था कि टीम में कब क्या हो रहा है, हम लोग इतनी शक्ति लगा देते थे उस मैच को देखने में कि हाँ। अगर उस दौरान कोई उठ गया तो हम कहते तो उठा क्यों भाई, वो बॉल चली गई है ना, वो आउट हो गया प्लेयर हमारा। हाँ। या तो इस तरह की कई बातें हमें याद आती है। मुझे एक चीज और याद आती है आरती, हमारी सहेलियां कहती थी कि जो गिलहरी है ना इसकी पूंछ पर पत्थर मारो वो 25 पैसे देती है।
1: ये तो
0: हमें याद है, हमारे दीवारों पे, छत की मुंडेर पर गिलहरी आती थी, हम पत्थर इकट्ठे कंकर करके उसको मारते थे। अब वो कंकर ना उसके वहां लगता ही नहीं था पूंछ पे, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट होती थी।
1: गिलहरी आपके पकड़ में कभी नहीं आ सकती।
0: हमें लगता काश ये 25 पैसे दे दे हमको, काश ये 25 पैसे दे दे हमको।
1: तो और एक हमारे भाई साथी है वो भी लिखते हैं कि बचपन में एक और अंधविश्वास था, जैसे ही तारा टूटा दिखाई दिया तो या 5 फल का नाम ले लो या 5 उंगली मुंह में डाल लो, और हम ये करते भी थे। बहुत बढ़िया,
0: सुंदर। तो और कुछ है बताइए। हाँ, श्रोता ने
1: एक हमारे श्रोता है जो लिखती हैं कि कोई तारीफ कर इसमें बड़े होने के बाद भी कुछ कितने ही अंधविश्वास में जीते हैं, जैसे बाहर निकलने पर बिल्ली का रास्ता काटना, कोई तारीफ कर दे तो नजर लगने का डर होना। हम लोग जब स्कूल में थे तब हम लोग एक मैना देख लेते थे तो लगता था कि कुछ बुरा होने वाला है, और जैसे ही 2 मैना दिख जाती थी तो हम लोग खुश हो जाते थे। तो मैं तो अब इन बातों पर भरोसा नहीं करती, पर मेरी सहेली जो कि मतलब जॉब करती है तो अभी भी इस बात को मानती है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग मिले तभी उसे एक मैना दिखाई दी तो बहुत मायूस हो गई कि वो कहने लगी कि इसलिए मैं अपने मोबाइल में 2 मैना की तस्वीर रखती हूँ। हम सारी सहेलियां उसकी इस बात पर बहुत हंसे, और मेरी मम्मी का कहना है कि कभी भी मुझे एक आंख मत दिखाया करो, और वो दिन भर एक आंख दिखाने में गुस्सा हो जाती।
0: बिल्कुल सही कहा, जब हम किसी एक पक्षी को देखते हैं तो कहते हैं 1/4 सौरो, और 2 जोड़ा दिखता है तो हम कहते हैं 2/4 जॉय। तो ये इस तरह की हमने धारणाएं बना ली हैं कि जोड़ा दिखेगा तो अच्छा कुछ होगा, अकेला कोई दिखेगा तो बुरा कुछ होगा। ये इस तरह की धारणाएं आज भी हमारे साथ चल रही हैं, और गाहे बेगाहे हम उससे प्रभावित होते भी।
1: बिल्कुल। और बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने मैसेज भेजे हैं, कमेंट भेजे हैं, लेकिन इतना हम गीत नहीं सुनेंगे तो फिर संगीत की कमी हो जाएगी थोड़ी।
0: बिल्कुल।

0: हाँ तो आरती, प्यार तो हम अपने आप से भी करते हैं, अपने परिवार वालों से
1: और हम एक दूसरे से भी करते हैं, और अपने सखियों अपने सखाओं से भी करते हैं,
0: बिल्कुल करते हैं, और अपनी रसोई से भी करते हैं जहाँ हमें सुस्वादु भोजन बनाना पड़ता है,
1: स्वास्थ्यपूर्ण
0: भोजन बनाते हैं, है ना। तो क्या लिखा है हमारी सखियों ने कि कैसे रखती है वो अपनी रसोई को साफ सुथरा?
1: एक हमारी जो सखी है वो कहते हैं कि रसोई को चमकती और साफ रखने के लिए रोज खाना बनाने के बाद गैस और काउंटर को साफ कर लीजिए अच्छे तरीके से। बर्तन को तुरंत धोकर व्यवस्थित करके रखें। फर्श पर गिरे पानी या खाने को तुरंत साफ करें। सप्ताह में एक बार अलमारियों और फ्रिज की सफाई करें। सूखे और साफ कपड़ों से सतहों को पोंछें। कूड़ेदान को रोज खाली करें। इस तरह थोड़ी सी नियमित सफाई करने से रसोई जो है वो हमेशा साफ और चमकती रहेगी।
0: बिल्कुल, हमारी एक सखी लिखती है कि रसोई को हमेशा चमकता और व्यवस्थित रखने के लिए सबसे जरूरी है कि नियमित रूप से छोटे छोटे उपाय अपनाएं। किचन सिंक की सफाई, सिंक को साफ करने के लिए आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बर्तन धोने का जेल और विनेगर मिलाकर घोल बनाएं। इस मिश्रण से सिंक और स्टील के नलों पर लगे हार्ड वाटर के जो दाग हैं आसानी से हट जाते हैं और बदबू भी नहीं आती है। काउंटर टॉप और स्लैब की देखभाल मैजिक ब्रिक्स की किचन टीप क्लीनिंग जो गाइड है उनके अनुसार करें। बाबरे, बहुत ही इन्होंने तो टेक्निकली लिख दिया है। काउंटर टॉप की सामग्री के आधार पर सुरक्षित सफाई करें, घोल चुनें, गर्म पानी हल्के साबुन के घोल से जिद्दी दागों को तुरंत पोंछें ताकि चिकनाई न जमे। फर्श पर तेल या दूध गिरने से फर्श या उसको साफ भी रखें। सूखा आटा छिड़क कर भी साफ रख सकते हैं, आटा सारा तेल सोख लेता है।

0: से 5 मिनट बाद अखबार या कपड़े से पोंछने पर चिकनाई आसानी से साफ हो जाती है। तांबे के बर्तनों को चमकाना है तो पुराने और काले पड़ चुके तांबे और पीतल के बर्तनों के बेस को साफ करने के लिए टोमेटो केचप का इस्तेमाल करें। केचप लगाकर कपड़े से रगड़ने पर बर्तन तुरंत चमक उठते हैं और किचन का हर कोना जिद्दी और गंदगी को आसानी से साफ करने के लिए हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी जो लिखती हैं कि रसोई में सभी दाल चावल मसाले जो भी हैं या तो उनको ट्रांसपेरेंट जो ऐसे दिखते हैं जो ऐसे डिब्बों में रखें और उन पर नाम लिख देने चाहिए ताकि कोई चीज ढूंढनी ना पड़े। हर बार भोजन बनाने के बाद आसपास गिरे सभी गंदगी को साफ कर देना चाहिए। मसालों और दाल आटे के डिब्बे को भी साफ कपड़े से पोंछते रहना चाहिए। इस तरह थोड़ा बहुत साफ करते रहने से रसोई साफ रह सकती है। एक ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा वहां पे फैन लगा होना चाहिए जिससे कि रसोई में दम घुटन सी ना हो और धूप आने से ऐसी कोई खिड़की भी होनी चाहिए और हवा के लिए अच्छा रास्ता होना चाहिए। तो धूप आने से रसोई का वातावरण शुद्ध रहता है। कुछ सफाई हफ्ते में और महीने भर में एक बार करनी ही चाहिए। जो शुद्ध रसोई में भोजन शरीर जो करते हैं जब बनाते हैं तो शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक लिखते हैं कि बारिश के मौसम में रसोई में नमी सीलन और चिकनाई जल्दी होती है। कुछ आसान घरेलू उपायों से इसे साफ सुथरा और चमकदार रखा जा सकता है। बहुत सारे इन्होंने उपाय लिखे हैं। और इसके अलावा लिखते हैं कि किचन साफ सुथरा होना ही चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि जब भी कुछ सब्जियां काटें उनके छिलकों को अच्छी तरह से समेटें, फेंके नहीं। कभी कभी छिलके जमीन पर पड़े रहते हैं और उनसे पैर फिसलने का डर भी बना रहता है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे केला खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं तो कोई आएगा अचानक पैर फिसलेगा सड़क पर, कहीं भी आप धड़ाम से गिर जाएंगे।
1: बिल्कुल। और बहुत जरूरी है कुछ चीजों को ध्यान रखें, तो क्योंकि रसोई ऐसी जगह है ना कि अगर हम साफ नहीं रखेंगे तो जो खाना पड़ा रहेगा अगर वहाँ पे तो चूहे या इस तरीके की चीजें
0: कॉकरोच
1: आ जाते हैं।
0: बिल्कुल। कीट पतंगे जो है वो घर में होते ही हैं और इनका ध्यान रखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि कम सामान रखें और इतना सामान रखें जितनी रसोई में जरूरत हो।
1: खाली डिब्बे जमा मत करिए।
0: बर्तन इकट्ठा कर लेते हैं शौकिया और किचन में और सिंक में दुनिया भर के बर्तन लगा देती हैं गृहिणियां दिन भर की, शाम को साफ कर लेंगे या बाई आएगी तो अगले दिन मांज लेगी। वो जो ढेर होता है बर्तनों का वो घर में एक अलग सी स्थिति पैदा कर देता है। ऐसी स्थिति में खाना बनाना भी जो है अच्छा नहीं लगता
1: और वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक
0: रहता है। बिल्कुल। स्वास्थ्य से तो हम खिलवाड़ करते ही है और बहुत कुछ चीजें जो है हमारे घर की गृहिणी पर निर्भर करती है कि वो अपनी रसोई को किस तरह से साफ सुथरा रखिए
1: और जो फालतू के सामान उनको जमा मत करिए। और इस समय एक छोटा सा गीत सुनते हैं।
0: बिल्कुल
1: प्यारा सा।

आरती बहुत सुंदर गीत था ये, और मुझे लग रहा है कि मैं भी तुम्हारा नाम गुलमोहर रख दूं। और पता है गुलमोहर का अर्थ क्या होता है? गुल यानी फूल, मोहर मतलब चमक, जो सुंदर है, जो अच्छा। शोभित है।

0: यानी गुलमोहर जो एक सुंदर पेड़ का नाम भी है जिस पर चमकीले लाल नारंगी फूल खिलते हैं और इसलिए ये नाम खुश सुंदरता खुशहाली रंगों और प्रकृति की शोभा का हम प्रतीक मानते हैं और तुम अभी बिल्कुल वैसी ही लग रही हो खिलाती भी सुंदर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपको ये।
0: तो चलिए अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम से हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस कार्यक्रम से आज मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों विविध भारती का स्टूडियो नंबर एक हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो बढ़ा लीजिए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज, देखते हैं ये पहला कॉल कहाँ से आया है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर एमपी से।
0: एमपी कहाँ से, कौन सी जगह से? एमपी के
1: मैहर से बात कर रहा
0: हूँ। मैहर से भाई, मैहर तो तीर्थ स्थल है, वहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो अभी वहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत सारी चढ़नी पड़ती थी, तो कोई अभी सड़क वगैरह बन गए, व्यवस्था हो गई कि आसानी से आप चढ़ सके?
1: जी जी जी मैम, अभी तो आसानी से दर्शन करने के लिए आते हैं, बाकी सुविधा तो पूरी तरह से हो गई है मैम।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए फिर, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी फिल्म इतिहास सुनवा दीजिएगा, वो गाने के बोल है जुदा अपने दिलवर से होने लगी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम सूरत से बोल रहे हैं सर। मेरा
0: नाम आपका?
1: जितेंद्र।
0: जितेंद्र जी, बताइए क्या हाल है?
1: सलून का दुकान है मेरा।
0: अच्छा, तो बताइए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: जीत जाएंगे हम जिंदगी हर कदम, जंग फिल्म का गाना है।
0: अगर मन में चाहत हो तो सचमुच हर कदम पे आपकी जीत हो सकती है, और बस अपनी मेहनत करते रहना है जिंदगी में, यही तो फलसफा है जिंदगी का।
1: ओके मैडम,
0: ठीक है। तो धन्यवाद आपको कि आपने हमें फोन किया। तो अभी अब बातचीत कर रहे हैं खत्म। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम नंगला काशान पोस्ट औरंगाबाद जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साक्य बात कर रहा हूँ।
0: रूप सिंह
1: साक्य?
0: साक्य, अच्छा। बताइए रूप सिंह जी, क्या हाल है और अपने कासगंज है उस गांव के बारे में भी बताइए।
1: हमारा गांव तो एक देहाती एरिया में है और खेती बाड़ी करता हूँ मैं।
0: खेती बाड़ी में कौन सी फसल उपजती है वहाँ पर?
1: सभी तरह की उपजती है, जैसे बाजरा है, धान है, मक्का है, आलू है जी।
0: तो आप
1: धान और मूंगफली की खेती लड़ी हुई है।
0: अच्छा, बढ़िया। तो व्यापार भी करते हैं आप?
1: व्यापार नहीं करते अभी।
0: ओके, सिर्फ मतलब खाने भर की उपज होती है।
1: जी जी जी
0: जी। बताइए, गानों के शौकीन है, गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो कौन से गाने पसंद आते हैं, पुराने गाने या नए गाने?
1: पुराने सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, मोहम्मद रफी है, मुकेश हैं, किशोर कुमार हैं, लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसे।
0: जी जी, इन गायक गायिकाओं की आवाज भला कौन नहीं पसंद करेगा। बताइए फिर कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म है जीने की राह।
0: जीने की राह
1: जी, और गाने के बोल हैं, एक बंजारा गाय जीवन के गीत सुनाए।
0: क्या बात है भाई, बड़ा ही दर्शन वाला गाना चुना है आपने। और सचमुच जीने की राह के बारे में पता चल जाए तो जीवन कितना आसान हो जाए ना।
1: जी बिल्कुल
0: जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता दीदी जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगाफाटा, तालुका कलमदरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ बहन जी।
0: पांडुरंग जी बताइए, क्या हाल है आपका?
1: ठीक ठाक है। हमारे वारंगे फाटे की खिचड़ी खाने को आओ, खिचड़ी प्रसिद्ध है वारंगा फाटा की।
0: अच्छा भाई, वाह, जरा उसकी रेसिपी बता सकते तो बताइए, कैसे बनती है खिचड़ी, क्या खासियत है खिचड़ी की?
1: तुम्हारे को यहाँ से हम सेंट छोड़ेंगे, बोले तो उसका स्वाद छोड़ेंगे।
0: जी जी जरूर। हाँ, तो अभी बताइए उसमें क्या खासियत है उस खिचड़ी की? वैसे तो दाल चावल,
1: बोले तो मसूर की दाल है और चावल है और बाकी सब मसाला रहता है, गरम मसाला।
0: अच्छा जी जी। तो किसी विशेष दिन बनती है क्या ये खिचड़ी की, रोज खाई जाती है?
1: नहीं नहीं नहीं, विशेष नहीं, हमारे यहाँ की प्रसिद्ध है वारंगाफाटा, बोले तो खिचड़ी पहले से शुरुआत में ये प्रसिद्ध है।
0: बढ़िया भाई, खिचड़ी तो सुस्वादु भोजन नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जो मसालेदार खिचड़ी तो अच्छी लगती है और फायदेमंद बहुत है।
1: हाँ,
0: है ना, कहा जाता है कि सप्ताह में एक दिन तो खिचड़ी खानी चाहिए,
1: पर नाश्ते में खिचड़ी मिलती है। हाँ, और भजिया मिलता है
0: तो बना भी लेते हैं। आप बना भी लेते हैं कि सिर्फ खाने के शौकीन हैं?
1: नहीं नहीं, बना लेते नहीं, हम देते हैं ग्राहक को।
0: अच्छा अच्छा, आपकी कोई शॉप है क्या?
1: हाँ, होटल है, होटल है। अच्छा, वारंगाफाटा में होटल है।
0: क्या बात है, अब देखिए हमारे श्रोता सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि हमको भी मौका मिले कभी वारंगाफाटा जाने का। वैसे
1: कभी भी मिलेगा, खिचड़ी नाश्ता और खुश हो जाएंगे खाने के बाद।
0: वैसे जिस शहर में जाए, जिस जगह पे, वहाँ की कोई मशहूर चीज हो तो वो जरूर चखना चाहिए, स्वाद चखना चाहिए, है ना?
1: हाँ, इधर नागपुर रोड जाता है, अकोला नांदेड़ रोड जाता है, चौक रास्ता है, टी पॉइंट है और हर तरफ से गाड़ी आई थे, हमारे गांव से ही जाते हैं।
0: अच्छा, क्या बात है भाई। चलिए, बड़ा अच्छा लगा जानकर। अब बताइए कि गाना आपको कौन सा पसंद आ रहा है समय?
1: गाना सुना है रोटी कपड़ा मकान में का, महंगाई मार गई।
0: तो आपको कहते हैं धन्यवाद और सुनवाते हैं आपको ये गाना, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।

उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। एक हमें आंख की लड़ाई मार गई।

0: हेलो फरमाइश।
1: न जाने ये नजर की उदास रहती है, न जाने से किसकी तलाश रहती है, ये जान के भी किस्मत में हमारी के फोन को लगे या ना लगे, मैडम जी हमें फिर भी फोन लगने की आस रहती है।
0: क्या बात है, और हमें भी आस रहती है।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइएगा, और हम आपके जो आपने शुरुआत की उसके जवाब में ये कहना चाह रहे हैं कि आज तो हमें भी रहती है कि हमारे श्रोताओं के कॉल लग जाए और हमारी बातचीत हो जाए। कहिए।
1: सतीश गुलियानी, दिलकुशा मार्केट, जलंधर, पंजाब से बोल रहा हूँ।
0: सतीश गुलियानी
1: जी। जी जी
0: जी, तो बताइए वहाँ के बारे में, जलंधर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जलंधर में जानकारी मैडम सबसे बढ़िया, यहाँ देवी तलाब मंदिर है हमारी माता जी का, जिनके सहारे हम जीते हैं। बहुत बढ़िया पुराना मंदिर है ये, बहुत सब मनोकामना यहाँ पूरी होती है। बाकी घूमने फिरने बच्चों के लिए वंडर लैंड है, बहुत बहुत कुछ है मैडम यहाँ देखने को। नान खाने को बहुत अच्छे हैं यहाँ।
0: क्या खाने को?
1: छोले पूरी।
0: अच्छा,
1: छोले भटूरे जो पंजाबी खाते हैं जी।
0: छोले भटूरे तो वैसे भी पंजाब के बहुत मशहूर होते हैं जी।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
0: और बताइए वहाँ के थोड़े कल्चर के बारे में बताइए। पंजाब का जो लोक संगीत है बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारे लोक धुनों पर आधारित पंजाबी गाने आजकल फिल्मों में भी शामिल किए जा रहे हैं, और बहुत सारे फिल्मी गीत पंजाबी।
1: पंजाबी जैसे ये एक लाइन है, पेके जान वाली है नी किन्ना, ओए होए नी किन्ना, है नी किन्ना चीर लाएंगी। ये गाना पंजाबी है जी हमारा।
0: क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया,
1: बहुत चलता है।
0: हाँ जी, तो पंजाब की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म भी आई थी, बहुत मशहूर हुई थी, और वहाँ के एक गायक हैं जो बहुत मशहूर हुए थे, याद है क्या?
1: सारे गायक सारे मशहूर हैं यहाँ पे, हम भी मशहूर हैं मैडम यहाँ पे हैं।
0: अच्छा, आप किस लिए मशहूर है भाई, बताइए, बहुत बड़ी अच्छी बात है ये तो।
1: हम रेडियो के लिए मशहूर हैं, जो कि प्रोग्राम चलता है ना।
0: हाँ,
1: तो उसमें हम भी फोन यहाँ पे लोकल फोन करते हैं।
0: अच्छा, मतलब फोन करने के लिए मशहूर है कि आपके कॉल हर प्रोग्राम में लग जाता है। वाह भाई, क्या बात है।
1: जी जी जी।
0: और अपने बारे में बताइए, करते क्या है आप?
1: हमारा मैडम फूड सप्लीमेंट का काम है।
0: अच्छा,
1: हम तो यही कहते हैं कि नशों से दूर रहो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, जल्दी सुबह उठो, सैर करो,
0: बिल्कुल।
1: और सबसे बड़ी बात कि अपने माता पिता की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो।
0: बिल्कुल, तो आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं ना?
1: मैडम मेरे माता पिता नहीं है, मेरी उम्र अच्छा बहुत ज्यादा हो गई है, 67 है।
0: अच्छा, ओहो।
1: मैडम मैं जब छोटा था तो मुंबई दौड़ गया था एक्टर बनने के लिए।
0: फिर लौटे कैसे?
1: लौटे मैडम किस्मत ने साथ नहीं दिया, मैं वीरू देवगन के साथ था।
0: बढ़िया।
1: हाँ जी,
0: तो आपकी तो आवाज भी अच्छी कड़कदार है।
1: हाँ मैडम, वक्त ने अपन के साथ वफा नहीं किया, लेकिन वक्त की हम अभी भी बहुत कदर करता है।
0: जी जी जी,
1: बिल्कुल मैडम। यहाँ वहाँ पे पता नहीं कब आपकी किस्मत पलटी खा जाए।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: कब किस्मत बदल दे। और देखो मैंने वहाँ ऐसा देखा है कि लोग चाहे भूखे भी रहते हैं, कहते हैं हम रहेंगे मुंबई में, वापस नहीं जाएंगे।
0: जी, बहुत सारे जो ऐसे कलाकार हैं जो आज आकाश की ऊंचाइयों पर हैं, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है।
1: ये धर्मेंद्र जी हमारे पंजाब के हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
1: इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं भी अपने शूटिंग में जाता था, मैं भी

0: जी
1: छुट्टी में जाता था, मुझे उसका काम मिला था लाइट मैन का।
0: अच्छा अच्छा बढ़िया।
1: लेकिन मुझे किसी ने बताया कि आपकी आवाज है लाइट मैन, ये लेबर वाली नहीं है, आप किसी साइड मास्टर के साथ मिल जाओ।
0: अच्छा
1: तो फिर मैं मिल गया था जी वीरू देवगन जी के, अजय देवगन जी के पिताजी हैं, वीरू देवगन के पिताजी हैं उनके साथ।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो बात खास होनी होगी एक दिन रात को जरा सी बात पे, कि मैं बिना बताया उनके कमरे में चला गया, उन्होंने कहा गेट आउट, बाहर निकल जाओ।
0: अच्छा।
1: बस बाहर आ गया, मुझे मूड खराब हो गया। मैंने कहा यहाँ तो, यहाँ पे मेरा होटल था उस टाइम, 10-10 वर्कर काम करते थे। तो मैं इसी घुमाने में था कि यहाँ मेरा इतना बड़ा होटल है, 10 वर्कर काम करते हैं, ये वहाँ मुझे झिड़के मार रहे हैं। लेकिन वो झिड़के उनकी प्यार वाली थी, अगर सह जाता तो आज मैं कामयाब होता।
0: इसमें दो बातें हैं, कई बार क्या होता है बड़ों की डांट आपके लिए बहुत मायने रखती है और अच्छी भी लगती है, लेकिन कई बार आपका जब सेल्फ रिस्पेक्ट चोटिल होता है तो आप वहां नहीं रहना चाहते हैं।
1: जी जी।
0: तो ये
1: जी,
0: आपने जी, अपने आप चुना। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, कौन सी फिल्में देखी हैं धर्मेंद्र जी की जो बहुत पसंद?
1: सारी फिल्में देखी है, मैंने सारी फिल्म देखी है। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा छोड़ूंगा नहीं लाला, बहुत फिल्में देखी है मैंने, बहुत पिक्चर देखी है, क्या क्या नाम बताऊंगा इनका।
0: क्या बात है। अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: इज्जत फिल्म का गाना सुना दो जी, ये दिल आकाशवाणी में ना लगता नहीं हम क्या करें।
0: अच्छी बात है जी, इज्जत फिल्म का गाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया और इतनी सारी बातें साझा की। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम, आपको सुना रहे इज्जत फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी।
1: मैं छत्तीसगढ़ कटोला तालाब रायपुर से मोहन लाल देवांगन मास्टर बोल रहे हैं मैडम जी।
0: जी मोहन लाल देवांगन जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है, बहुत ही पुराने श्रोता हैं आप तो।
1: जी हाँ, देखिए मैं पूरी भारती का बहुत दीवाना हूँ और मैं बता दूँ कि मेरे परिवार भी वैसे दीवाना है।
0: जी ये दीवानापन हमेशा बना रहे, यही हमारी शुभकामना है और हमारी यही कोशिश भी रहेगी कि प्रोग्राम की गुणवत्ता बनी रहे ताकि आप सभी का दीवानापन जारी रहे।
1: जी बिल्कुल। तो
0: अब बताइए
1: मैडम जी,
0: क्या काम काज है आपका, हमारे श्रोताओं को बताइए, जो नए श्रोता हैं वो भी आपके बारे में।

0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं ट्रेडिंग स्टाफ है मेरा करूँ आप रायपुर में मोहन चौहान के नाम से, और मेरा बेटा भूपेश दिवांगन और तुषार दिवांगन फैशन डिजाइनर है।
0: अच्छी बात है, क्या बात है।
1: हम लोग साथ में मिलकर सब करते रहते हैं, और उसके बाद जो है देखिए मेरा बेटा जो फैशन डिजाइनर किया है, एक जो दिल्ली से किया है और एक छत्तीसगढ़ से किया है।
0: जी जी।
1: तो वो सब हम एक साथ सब काम करते रहते हैं, और मेरा एक और दुकान यहाँ पर शोरूम बड़ा बनने जा रहा है, मतलब बन के लगभग तैयार होने पर है, हो जाएगा इस महीने में।
0: जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये मिलजुल कर जो काम कर रहे हैं, शोरूम भी तैयार हो गया, तो ये आपकी मेहनत का कमाल है कि आपने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी होगी कि वो मेहनती हैं और उस आपके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं ना। तो नए बच्चों को भी गानों से जोड़ रखा है, रेडियो से जोड़ रखा है आपने?
1: वो तो मैं समझता हूँ कि मेरे से ज्यादा सुनते हैं मैडम जी, सुबह वो वर्कशॉप में रहते हैं तो रेडियो चलता रहता है, सुबह 6 बजे चालू हो जाता है और रहते हैं रात को 11 बजे बंद होता है, टीवी देखते रहते हैं लेकिन रेडियो बंद नहीं होता।
0: ये बात बहुत अच्छी है कि जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी पुराने गानों से और पुरानी परंपरा से, पुरानी विरासत से जोड़ के रखना जरूरी है। तो अब बताइए कौन सा गाना सुनवाया जाए मोहनलाल जी?
1: देखिये मैडम जी, इस समय देखिये मेरा जन्मदिन होता है मोहनलाल देवांगन के नाम होता है मोहन पुरारी, लेकिन अब ये कृष्ण जन्माष्टमी का भी है। मैं सभी श्रोताओं को, आप विविध भारती परिवार को सबको शुभकामनाएं देता हूँ।
0: और कृष्ण जन्माष्टमी की जब बात चले तो हम ये जानना चाहते हैं कि कृष्ण कर्म का संदेश देते थे, लेकिन कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं। एक बाल रूप है, उनका सखा रूप है, और एक ऐसा रूप है जो दर्शन सिखाता है। आपको कौन सा वाला रूप पसंद आता है श्री कृष्ण का?
1: मुझे तो उसका बचपना रूप बहुत अच्छा लगता है,
0: बाल रूप।
1: बाल रूप बहुत बहुत अच्छा लगता है, और उनका जो बाल रूप में हर एक पात में नटखट जो होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है मैडम जी।
0: जी जी, उनके बाल रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है सूरदास ने, कभी पढ़िए सूर की पद रचना। उन्होंने एक जगह लिखा है, किलकत कान घुटूरवन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरी बे धावत। तो श्री कृष्ण जी के लिए ये रचना उन्होंने की है, तो आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि सचमुच कृष्ण का बाल रूप सामने आ गया है। कौन सा गाना सुनवाया जाए मोहनलाल जी?
1: मैं गीत चुना हूँ फिल्म खुददार का, और आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी, और उसका बोल है, मच गया सुर सारी नगेरी रे, आया भी रज का बाका, संभाल तेरी जगेरी रे।

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से?
1: खलील अहमद
0: जी। खलील जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: हम फिल्म है पगला कहीं का और तुम मुझे यूं भुलाना पाओगे, ये गाना सुनना चाहेंगे
0: जी। अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं?
1: हम तो रिटायरमेंट है, अभी घर में है फिलहाल।
0: अच्छा, क्या काम काज करते थे?
1: हम तो ईंट जुड़ाई का काम करते थे।
0: अच्छा अच्छा, तो भाई ये तो बहुत बड़ा काम है, ईंट अगर ना हो तो घर कैसे बने? घर का निर्माण करना है तो ईंट बनाना ही पड़ेगा।
1: जी जी जी जी
0: जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संत हिराम नगर भोपाल से बोल रहा हूँ मैम।
0: आपका शुभ नाम?
1: बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ मैम।
0: जी बाबूलाल जी, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या काम?

0: आज है आपका?
1: क्या सैलून की दुकान है मैम
0: जी? और भोपाल शहर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी देंगे?
1: भोपाल अच्छा शहर है मैम, तालाब वगैरह है देखने के लिए, अच्छे है जगह बने हैं, बढ़िया है। कमला पार्क है
0: जी, जी मैम। और गाना किस तरह का पसंद करते हैं, पुराने गाने पसंद है या नए गाने पसंद है आपको?
1: पुराने गाने मैम, पुराने गाने।
0: तो आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज मैम सुनेंगे हम दाता फिल्म का गीत और बाबुल का घर ये बहना।
0: बेहतरीन गाना चुना है आपने, अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं निर्मल डिस्ट्रिक्ट भैंसा गांव से मोतीराम पिंगले बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी मोतीराम जी, बताइए अपने गांव के बारे में, बताइए जरा और अपने बारे में भी जानकारी दीजिए।
1: एक कस्बा है मैडम, उतना कोई खास नहीं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर सरस्वती माता का एक टेम्पल है। यहाँ पर काफी लोग महाराष्ट्र से आते हैं, दूर दूर से आते हैं मैडम दर्शन करने के लिए।
0: लोग कैसे हैं वहाँ के?
1: लोग अच्छे हैं मैडम, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई हादसा नहीं होता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। इतना सेफ एरिया है मैडम हमारा।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर तो खास हो गया ना आपका शहर। लड़कियों की शिक्षा के लिए वहाँ पर लोग कोशिश करते हैं, मतलब लड़कियाँ पढ़ने लिखने जाती
1: हैं मैडम, बहुत आगे है मैडम।
0: क्या बात
1: यहाँ
0: है,
1: यहाँ पर SSC या इंटरमीडिएट जब एग्जाम्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा लड़कियाँ पास होती है मैडम।
0: अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: संगम फिल्म का मैडम, मुकेश का गाना, राज कपूर के ऊपर फिल्माया गया, ओ महबूबा मेरे दिल के पास ही तेरी मंजिल मजबूत।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया।
1: मैम एक एक एक रिक्वेस्ट है मैडम, क्या मैं गाना गाकर सुना सकता हूँ मैम?
0: जरूर जरूर सुनाइए।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनमर्ग से, मैं आपका नेम श्वेता लतीफ अहमद रैना।
0: सोनमर्ग से बोल रहे हैं? सोनमर्ग तो भाई पर्यटकों के लिए बड़ी खूबसूरत जगह मानी जाती है।
1: हाँ हाँ, यहाँ तो पर्यटक हर लगभग 1500 से ज्यादा ज्यादा एक दिन में आते हैं।
0: गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम।
1: हाँ, गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूध पथरी है ना, बड़गाम के साइड में दूध पथरी।
0: तो इस समय वहाँ पर मौसम कैसा है, ठंडा है या नॉर्मल है?
1: मैं नहीं, उतना गर्मी नहीं, उतना ठंडी, नॉर्मल।
0: तो आपका क्या काम है?
1: बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ।
0: वहाँ पर खेत के लिए जब खेत में काम करते हो तो किस तरह की फसल उपजती है, मतलब वहाँ की पैदावार कैसी है?
1: पैदावार तो बहुत अच्छी, यहाँ इस साल तो यहाँ बारिश की वजह से बहुत कम फसल उगाया।
0: कौन सी फसल उपजती है ज्यादातर
1: यहाँ पे? ज्यादा और धान और मक्का एक ही फसल बनते हैं ना साल में यहाँ पे।
0: अच्छा अच्छा, बर्फ गिरती है तो आप लोगों को बड़ी परेशानी होती होगी, है ना?
1: हाँ, बहुत परेशानी है, 3 फुट कभी 4 फुट ऐसा ऐसा बारिश आता है, बर्फ आता है, यहाँ
0: जम जाता है बर्फ। और जो बाहर से घूमने जाते हैं उन्हें बर्फ बहुत ही रोमांचित करती है और बर्फ देखने के लिए लोग जाते हैं।
1: वो सोनमर्ग में तो लगभग 7-8 महीने तो बर्फ ही रहता है
0: जी। तो हाँ। बताइए तो कश्मीर की वादियों में कौन सा गाना आपके लिए भेजा जाए, आपकी पसंद का?
1: फिल्म का नाम है कुली नंबर 1, इसको दूसरे गाड़े कोई भी सुनाइए।
0: तो ठीक है। हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया इतनी दूर से और कश्मीर के बारे में इतनी सारी जानकारी भी दी। और आपको अब सुनवा रहे हैं कुली नंबर 1 फिल्म का ये गाना।

0: तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के फोन कॉल आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी दो माह तक कृपया फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी इसमें सहभाग का मौका मिले। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल करते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड 022। टेलीफोन नंबर एक और है, इसे भी आप नोट कर लें, 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, 2867-0288। इसके अलावा एक नंबर और, 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड 022। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग सौरभ घारू का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है।

0: ఇంతటితో ఇయాల్టి హుషారు జోరైనా సినిమా పాటలు వినిపించే కార్యక్రమం సమాప్తం. రేపు రాత్రి 8 గంటలకుండే హుషారు కార్యక్రమంలో మరిన్ని జోరైన సినిమా పాటలు వినిపిస్తారు మా రేడియో నిస్తం. ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 ఎఫ్ఎం మనస్సు నిండా సమయం 8:45 కావస్తుంది. మరి కాసేపట్లో సమాచార సంధ్య, 9:00 న్యూస్ ఎట్ 9, 9:30 స్పాట్ లైట్ ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి.
1: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 8:40 ఇప్పుడు సమాచార సంధ్య ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి.
2: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార్ సంధ్యా కే సాత్ మే విశాల్ శర్మ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया. बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया. भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए. दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में MSME के योगदान की सराहना की. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की. यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया. उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में. प्रधानमंत्री ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली. और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की. दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की. दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया है. संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं.
3: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है. फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है. इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है. पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है. आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है.
2: प्रधानमंत्री

0: ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
1: भारत और बेल्जियम दोनों ही रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया।
1: इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
3: For way beyond this region.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के सफल समापन का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक समझौते पर वार्ता को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा औद्योगिक साझेदारी के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। भारत ने ब्रसेल्स में डिफेंस अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है। बेल्जियम ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में डिफेंस अटैशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर श्री जॉर्ज ने कहा कि उसे पिछले साल अप्रैल में बेल्जियम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और तब से वो बेल्जियम की जेल में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे।
5: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी।
6: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
5: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in

0: 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। श्री जयशंकर ने यूक्रेन के कीव में वहां के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात के बाद ये बात कही। श्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराया। श्री मोदी ने कहा था कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करना होगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। बाद में विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की सचिव एलेनोर जेन लॉसन से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। तेज बारिश के कारण जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंदौली में आज स्कूल बंद रहे। इस बीच मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तेज बारिश का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। सरकार ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को एक साथ लाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अनाहत सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील गिलस को 2-1 से हराया। किदाम्बी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव की जोड़ी को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा

0: और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन कल जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में तैयारियां जोरों पर हैं। मथुरा में पहली बार कल जन्माष्टमी के मौके पर 500 द्रोण आकाश में भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत रूप से प्रदर्शित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए मथुरा पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने आज श्री स्वामी हरिदास सभागार का उद्घाटन किया और 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि श्रीमद् भगवद् गीता में दी गई श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी कठिन समय में सही निर्णय लेने और नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
2: सेंसेक्स 417 अंक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94.49 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Belgian counterpart Bart De Wever call for stronger strategic partnership. Belgium backs India's fight against terrorism. India and Belgium sign pact on defense cooperation, agree to double bilateral trade in next 5 years and enhance cooperation in fields of semiconductors, critical minerals and advanced technologies. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal hails MSMEs for achieving 7.8% GDP growth in previous quarter. Heavy rain and release of water from barrages caused floods in 23 districts of Uttar Pradesh. Prime Minister takes stock of situation in Varanasi. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls on Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Kyiv welcomes Prime Minister Modi's call to end Russia-Ukraine war. And in women's cricket, Group A match underway between India and Hong Kong in 2020 Asia Cup in Dubai. And now the news in detail. India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgian counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both the leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable energy, ports, logistics, space and advanced technologies. More from our correspondent.
4: Both leaders also welcomed the successful conclusion of negotiations on the India-EU Free Trade Agreement and called for its timely implementation. They also called for early completion of negotiations on the India-EU Investment Protection Agreement and the Geographical Indication Agreement. On defense and security, Belgium